0: product advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales at leicamedia.co.uk.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
4: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
5: खुद से भी ज्यादा.
3: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
5: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
3: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394.
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: Biker Radio.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: ये है लाइका गोल्ड।

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा ना रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवई ता बात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनिए।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भाव है साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

तिस दी वड़ियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर, जोर ना जीवन मरण न जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच्छ

0: एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुम से तुम तक, हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अभी यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है, क्या तुम मेरे साथ?

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी.
1: Listen back to your favorite shows by logging on to LaikaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Your wake up call. This is Kajal on Breakfast. Laika Radio.
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Good morning. Welcome to the world of entertainment. लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड का मनोरंजन प्रोग्राम लेकर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं और मेरा नाम है रवि शर्मा। थैंक्स टू काजल, छुट्टियां गुजार के लौटी है उत्साह से, ताजगी से भरी हुई। चेहरे पर जो ओज है भाई, वो तेज है, वो बता रहा है कि खूब मस्ती करके आई है। मंगलवार वर्ष 2026 के मई महीने की 26 तारीख, क्या संयोग है। और मैं आपकी सेवा में, मैं एक फूल हूं या भरा गुलिस्ता हूं, बताऊं तुम्हें किस कदर शादमा हूं। हर एक आईने में फकत तू ही तू है, हर एक आईने में फकत तू ही तू है। मैं हैरा परेशान हूं कि मैं कहां हूं, मैं लौटा नहीं तेरी बाहों से शायद, जरा देखना तो मैं अब तक वहां हूं। ये तेरी मोहब्बत की परवाज तौबा, मैं हूं आसमां पर या खुद आसमां हूं, वो महफिल या तन्हाई तारीफ तेरी, मैं तेरी नजर हूं, मैं तेरी जुबां हूं।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Leica Radio Network.
0: लीजिए सब आगाज करें प्रोग्राम का, दुआ सलाम हो जाए पहले। गुड मॉर्निंग।

0: तुमसे मिलकर कुछ याद आता है। अरे बहुत कुछ याद आता है, होता है भाई। कुछ लोगों से मुलाकात के बाद और अक्सर जब कि वो बहुत अरसे बाद मिल रहा हो तो बहुत सारी बातें याद आती हैं। कहते हैं जिंदगी में, अपनी जिंदगी के इतिहास में जब झांकते हैं, कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, कुछ दुश्मन भी याद आ जाते हैं, पर अपने सपने खिलखिलाते हैं, मुस्कुराते हैं जब उनके आमने सामने भाई लोग होते हैं, आते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK, आज का रेट में बता रहा हूँ भाई, अपनों को पैसे भिजवाने हो तो मौके का फायदा उठाइए। SBI UK से टुडेज दे आर गिविंग फॉर वन पाउंड, टुडेज रेट इज 128.3 रुपीस, 128 रुपए 30 पैसे का रेट चल रहा है। और भाई एक खास बात और याद दिला दूं आपको कि ये तो है एक पाउंड के बदले का रेट, लेकिन इफ यू सेंड मोर देन 1000 पाउंड्स और आप भेजते हैं SBI योनो के माध्यम से या SBI की ब्रांच में जाकर के, तो भाई यू विल बी इन टू विन ए 75 पाउंड्स वाउचर डेली व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स एंड गेट 1 ग्राम गोल्ड कॉइन व्हेन यू सेंड ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
2: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99,
2: हमजा समोसास 3 for 10,
3: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
2: सुहाना मसालास 2 for 150, रामदेव नमकीन 2 for 149,
3: हीरा ग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
2: केसर मैंगो पल 149, फूल मखाना 2 for 5, फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54 UN.
2: While stocks last.
4: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
5: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
4: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
5: And you didn't pay those massive roaming charges?
4: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
6: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
7: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: The timeless soul of Qawwali returns to the stage.
9: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
8: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
9: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
8: Join us for a mesmerizing night of soulful music and the magic of a true Mehfil.
9: On Sunday the 7th of June at Hackney Empire.
8: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner. Leica Radio.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे, जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज। कॉल करो
13: 07973733333. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: Location, location, location.
15: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
14: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
15: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
14: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
15: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
14: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
15: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
14: high appreciation
15: in Dubai.
16: Ye hai Leica Gold.

पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर हैं। इस दौरान पाकिस्तान और चीन ने आज एक साझा बयान जारी किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि अपने मुल्क में चीन के लोगों को प्रोजेक्ट्स और संस्थानों की सिक्योरिटी के लिए खास कदम उठाएगा पाकिस्तान। चीन ने कहा है कि वो पाकिस्तान की टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई की हिमायत करेगा। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से जारी साझा बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने चीन को जम्मू और कश्मीर की ताजा स्थिति बताई है, जिस पर चीन ने कहा है कि यह विवाद बहुत पुराना है। इसे यूनाइटेड नेशंस चार्टर, सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। ईरान पर नए हमलों के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने समझौते के ऊपर एक बयान दिया है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर ने आज कहा कि ईरान के साथ समझौता अभी भी संभव है। यह बयान अमेरिका के साउथ ईरान में किए गए नए हमलों के बाद आया है। दरअसल अमेरिकी फौज ने बताया था कि ईरानी मिसाइल ठिकानों और उनके जहाजों को निशाना बनाया गया है, जो समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि ये हमले आत्मरक्षा में किए गए हैं, अपनी हिफाजत के लिए किए गए हैं और उनका मकसद ईरानी बलों से सैनिकों को होने वाले खतरे को बचाना था, खतरे से बचना था। इन हमलों के बावजूद भी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने समझौते की संभावना से इनकार नहीं किया है, यानी समझौता अब भी हो सकता है। भारत से आने वाली खबरों में केरल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इलेक्शंस के नतीजे आने के बाद राजधानी तिरुवनंतपुरम में झड़पों की खबरें आ रही हैं। ये टकराव कल सोमवार रात यूनिवर्सिटी इलाके के पास स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जश्न मार्च के दौरान हुआ। एसएफआई नेताओं ने इल्जाम लगाया कि केरल स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जुलूस पर पत्थर फेंके और एक पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। पता चला है कि रोहतक जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल दी गई है। डेरा के एक स्पोक्स पर्सन ने बताया कि पैरोल अवधि के दौरान राम रहीम अपने सिरसा स्थित डेरे के हेडक्वार्टर में रहेंगे। दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा प्रमुख फिलहाल हरियाणा की रोहतक स्थित सुनारिया जेल में बंद हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जोसेफ विजय ने सीमांत किसानों के सहकारी बैंकों से लिए गए 50,000 रुपए तक के फसल लोन माफ कर दिए हैं। जोसेफ विजय ने कल सोमवार को यह ऐलान भी किया कि जिन बड़े किसानों ने सहकारी बैंकों से फसल लोन लिया है, उन्हें भी 5,000 रुपए की राहत दी जाएगी। ये ऐलान सेक्रेटरिएट में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद किया गया। भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के एक अहम समझौता हुआ है। बताया जा रहा है कि ये समझौता नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मौजूदगी में कहा कि ये समझौता बिल्कुल सही समय पर हुआ है और ये बहुत जरूरी है। जयशंकर ने बताया कि समझौता मजबूत और अलग अलग सप्लाई चेन बनाने में मदद करेगा और प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में भी मददगार साबित होगा। रूबियो ने भी अमेरिका समर्थित पैक्स सिलिका पहल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसकी नींव 4 फरवरी को रखी गई थी, जबकि भारत वाशिंगटन डीसी में हमारे क्रिटिकल मिनरल्स फोरम में शामिल हुआ था। इसके बाद भारत की पैक्स सिलिका से जुड़ने पर और रफ्तार मिली है इसे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने लिखित एक संदेश पैगाम जारी किया है। ये संदेश सरकारी टेलीविजन पर भी प्रसारित किया गया। खामनेई का ये पैगाम ताजा अमेरिकी हमलों के बाद आया है। अमेरिकी फौज ने कहा है कि उसने साउथ ईरान में नए हमले किए हैं, जिनमें ईरानी मिसाइल ठिकानों और उसके जहाजों को निशाना बनाया गया, जो समुन्द्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थी। मार्च में सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद खामनेई पब्लिकली कहीं

0: नजर नहीं आए हैं। अब तक उन्होंने जितने भी बयान जारी किए हैं वो लिखित रूप में वो जारी हुए हैं। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने उन रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिनमें ये दावा किया गया था कि ईरान को 12 अरब डॉलर की पेशकश की गई है। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन माजिद अल अंसारी ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स उन लोगों की ओर से फैलाई जा रही हैं जो इस समझौते को बिगाड़ना चाहते हैं। दरअसल समझौता ईरान और अमेरिका के बीच चल रही शांति बातचीत से जुड़ा है। ईरान चाहता है कि कतर में रखे गए उसके लगभग 12 अरब डॉलर के जमे हुए फंड को जारी किया जाए और कुछ रिपोर्ट्स में इसे ही समझौते की पहली शर्त माना जा रहा है। हालांकि अब कतर ने कहा है कि उसने ईरान को कोई पैसा देने की पेशकश नहीं की है। पेट्रोल और डीजल के बाद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के भी अब दाम बढ़ रहे हैं। आज यानी 26 मई को सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। भारत से आने वाली इन खबरों में ये जिक्र है। अब देश की राजधानी में सीएनजी की कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम होगी और ये 15 मई के बाद चौथी बढ़ोतरी है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कॉर्नी ने कहा है कि उनकी भारत के साथ फ्री ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। मार्क कॉर्नी का मानना है कि भारत के साथ ये डील होने पर कनाडा के लिए एक बड़ा बाजार खुलेगा जो वहां के कारोबार के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है लाइका रेडियो। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: Tere naina,
3: tere naina, tere.
2: तुम ऐसा करो, ये गाओ।

0: Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: And let me tell you the rates that they're giving at this moment. By 1 pound ke badle in Indian currency, they are giving 128.94 rupees. Pakistani, 375.25 rupees. Sri Lankan rupee, 438.7. Bangladeshi takas, 165.46. And Afghani, 85.14.
0: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Leica Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: The gold is sold at the rate of 107.88 pounds per gram.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: Leica Radio.
4: Leica Radio.
0: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: भाई आईपीएल जो है अपने चरम पर पहुंच चुका है और अब जो प्लेऑफ के मैचेस हैं वो शुरू हो रहे हैं. आज मुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का. देखते हैं इनमें से कौन चैंपियन बनता है. भाई टोटल अब बाकी रह गए हैं 3 मैच, आज के मैच को मिलाए तो 4 मैच रह गए हैं, तो टोटल 74 मैचेस खेले जाने हैं. आज का ये जो मैच है बताएगा कि कौन सी टीम आगे जाएगी. बट लेट मी टेल यू, मैच की एक खास बात भाई, राजस्थान रॉयल्स के वो प्लेयर आप भूल नहीं सकते उन्हें, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी. एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बयान दिया है, जब उनसे अपने केविन पीटरसन ने कहा कि ये धुआंधार बल्लेबाजी करके कैसा महसूस करते हो जो इतने 50s बनाए हैं आपने, कहते हैं 50s से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, मैं तो शतक और दोहरे शतक पर नज़र जमाए हुए हूँ. क्या बात है. कहते हैं मैं क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ. क्रिस गेल ने भाई कितने रन बनाए थे, 175 जो है वो मैक्सिमम रन्स का स्कोर T20 में रखा हुआ है उन्होंने, उसको तोड़ के 200 के आंकड़े पर नजर रखे हुए हैं. वैभव सूर्यवंशी ऑल द बेस्ट, जीते रहो बेटा.
0: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
5: Weddings, celebrations, corporate events, Lagerson सब कुछ efficiently handle करते हैं. Perfect location ढूंढने से लेकर incredible themes design करने तक, world class cuisine से हर छोटी बड़ी requirement तक manage करते हैं. 30 साल से ज्यादा का experience हर event को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. Location, design, management या catering. Ragasan.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices. Eurochange and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। मेरा नाम रवि शर्मा है और बहन भाइयों, कार्यक्रम के दूसरे दौर में हम आपका स्वागत चिंतन से किया करते हैं। चिंतन का मतलब है विचार। आज का विचार, चिंतन करना, विचार करना, सोचना। और ये वो सोच वैसी नहीं है जो नींद उड़ा दे, ये सोच है गंभीर विचार, सात्विक विचार, ऐसा विचार जो मन में एक तरह की भाई यूं कहिए कि ऐसी खलबली मचाता है कि जीवन को प्रशस्त बनाने के लिए रास्ता दिखाता है। अच्छी बातों पर विचार, अच्छी सोच पर विचार, अच्छे इरादों पर विचार। और आज के विचार में भाई एक बात शामिल करते हैं। कुछ लोगों को शिकायत है कि उन्हें रात भर नींद नहीं आती। हम चिंतन में शामिल कर रहे हैं ईस्ट लंदन से पवन शर्मा का भेजा आलेख। पवन कहते हैं कि नींद ना आने का कारण क्या हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। और भाई ऐसे में लोग कोशिश करते हैं कि नींद आए, कुछ लोग नींद की गोली खाने लगते हैं जो बहुत ठीक नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोग नींद की ना आने से परेशान हैं। कुछ को सोने में वक्त लगता है और कुछ तो अनिद्रा के शिकार, जिन्हें नींद आती नहीं। हर किसी की चाहत है कि उन्हें जल्दी नींद आ जाए, लेकिन कुछ स्टडीज से पता चलता है कि 5 से 50% तक लोग अनिद्रा के शिकार होते, नींद न आने का दर्द झेलते हैं। अब है भाइयों, इस मामले में अपुन बहुत लकी है। बेड में जाते ही विद इन 2-3 मिनट्स गायब। अब उसके बाद चाहे ढोल बजाते रहे, भाई मैं तो सो जाता हूं। लेकिन कभी कभी कोई ऐसी घटना घटती है। अब जैसे बता दूं आपको भाई, और पवन भाई आपको भी बता दूं, पिछले 3-4 दिनों से मेरा व्हाट्सएप हैक हो चुका है। और जिसने भी हैक किया है, कोई क्लेवर आदमी भाई, उनका धंधा यही लगता है कि वो मेरे सारे कॉन्टेक्ट उनके पास चले गए, मेरा वो यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, समझिए कि दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी फोटो, मेरा व्हाट्सएप नंबर, उससे मैसेज भेजते हैं मेरी तरफ से, यानी रवि शर्मा उनको मैसेज भेज रहा है कि मैं थोड़ा मुसीबत में हूं, मेरी मदद करो, कुछ पैसे भेज दो। अब है ना भाइयों, मैं रोज रेडियो पे बोल रहा हूं, जो सुनते हैं, जो जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो रेडियो नहीं सुन पाती या दूर दराज बैठे हैं। और मेरे हजारों कॉन्टैक्ट्स हैं बहन भाइयों। अब हुआ क्या कि उसमें लिखा गया मैसेज, पहले वो कहते भाई कोई बात करना चाहे तो बात नहीं कर रहे हैं, इस समय मैं बात नहीं कर सकता, बस मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है, मैं कल सुबह तक आपको वापस लौटा दूंगा, लेकिन मुझे इतने पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये स्कैम है और बहुत चल रहा है, लेकिन भाई जो लोग मुझे बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं, जो लोग ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि भाई मैं किसी कष्ट में, किसी तकलीफ में हूं और मदद मांगू और वो ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो साहब, अब हमारे एक प्यारे मित्र ने जब 500 पाउंड भेज दिए, 500 पाउंड ही मांगते हैं, 500 पाउंड ट्रांसफर इन दिस अकाउंट नंबर, नाम और है अकाउंट नंबर। कभी एक बार तो अकाउंट नंबर वो दे रहे थे लॉयड्स बैंक का, एक बार दे रहे हैं बिल्डिंग सोसाइटी का। भाई इस बात को लेकर के मैं बहुत परेशान हूं, और यकीन मानिए एक पूरी रात तो मैं सो नहीं पाया। उसके बाद जितने तरीके मुझे बताए गए उन सबको फॉलो करने की कोशिश की, क्या है ये ब्लॉक कर दो, ये कर दो, पर मेरे पास तो व्हाट्सएप का अकाउंट है ही नहीं, वो तो हैक हो चुका है, वो तो उनके पास है। अगर आप उस पर कोई मैसेज लिखेंगे तो उनको जाएगा, वो जवाब देंगे। और मजे की बात देखिए, मेरी वाइफ ने घर से ही मुझे व्हाट्सएप पर कोई संदेश भेजा, वो भी उनको गया। अब उसमें ये स्पष्ट नहीं होता कि वो मेरी वाइफ है, उसमें तो ये लगता है भाई किसी लेडी ने लिखा है कि आप कहाँ हैं, कब लौट रहे हैं, कब आ रहे हैं। अब ये सवाल सीधा साधा था, वहाँ से जवाब आता है मेरी तरफ से, मेरी तस्वीर के साथ, मेरे अकाउंट नंबर से, व्हाट्सएप से, मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ, फिलहाल ऐसा करो कि 300 पाउंड्स
देखो इतनी मेहरबानी की 500 से 300 पे आ गए, 300 पाउंड्स जो है तुरंत ट्रांसफर कर दो इस अकाउंट में, मैं बाकी जो है बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन साथ में ये भी लिखते हैं कि सुबह होने तक मैं आपके ये पैसे लौटा दूंगा, पर फिलहाल मैं मुसीबत में हूं। अब सोचने वाली बात है भाई, मेरी पत्नी इतना तो सोच ही सकती है कि आज तक तो कभी लौटाने की बात की नहीं, और लौटाने का हमारे में तो होता ही नहीं है भाई। मैं अपनी पत्नी को पैसे दूं या पत्नी मुझे पैसे दे, पैसे तो एक ही जेब से आ रहे हैं ना, एक ही घर से आ रहे हैं, हमने तो कभी पैसों का हिसाब किताब नहीं किया। तो वो एकदम सोच जाती है कि कुछ गड़बड़ हो गई है अकाउंट के साथ, और उन्होंने तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। कुछ दोस्तों ने उनको भाई तंग भी किया कि मैंने तो अभी अभी मिलियन पाउंड्स तो आपको ट्रांसफर किए, अब और कितने चाहिए, डांट के कहा। लेकिन साहब कुछ शरीफ सज्जन और मैं कहूँगा मासूम दोस्त, और सबसे बड़ी बात मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोगों ने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। जब मुझे पता चला मैं नहीं सो पाया। ना सोने के और भी कारण हो सकते हैं बहनों भाइयों, लेकिन पवन भाई कहते हैं कि टेंशन सबसे बड़ा कारण है, स्ट्रेस, परेशानी। और इस परेशानी से कैसे छुटकारा पाएं? जब मैंने अपने उन दोस्त को कहा, अरे भले आदमी पैसे ट्रांसफर करने से पहले एक फोन तो कर लेते, कहते भाई साहब आपका फोन मिल ही नहीं रहा था। मिले कैसे? वो फोन उठाएंगे नहीं भाई, वो फोन व्हाट्सएप पे कर रहे थे। और जानते हैं आप, जो दूर दराज से विदेशों से खासकर लोग जो फोन करते हैं वो व्हाट्सएप पे करते हैं। आजकल व्हाट्सएप इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि नॉर्मल फोन पे लोग फोन ही नहीं करते, बोले फोन नहीं मिल रहा था और आप मुसीबत में हो, ये मुझसे सहा नहीं जा रहा था। बहन भाइयों, ऐसा कोई भी संदेश आपके पास आए किसी की तरफ से, मेरी तरफ से आजकल तो चल रहा, वो 3-4 दिन हो गए हैं, कई बार ब्लॉक किया, फिर किस तरह से वो हैक कर लेते हैं, मतलब पहले बिल्डिंग्स, पहले लॉयड्स बैंक के अकाउंट भेज करके पैसे मांग रहे थे, अब वो बिल्डिंग सोसाइटी हैलिफैक्स के अकाउंट में पैसे मांग रहे हैं, नाम बदला हुआ होता है, लेकिन मेरे फ़ोन से मेरे नाम से मैसेजेस जा रहे हैं। और पैसे मेरी पॉकेट से नहीं जा रहे हैं, पर जिनकी पॉकेट से जा रहे हैं, मेरे प्रिय हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। हालांकि लोग, काफ़ी लोग समझदार और इस सूझबूझ से काम ले करके कि भाई ये स्कैम हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा प्यार भी दुखदाई हो जाता है, नींद उड़ा देता है, चैन गंवा देता है। अब साहब नींद न आने की बीमारी के बारे में जिक्र करते हुए चिंतन कहीं और मुड़ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ बहनों भाइयों कि पहले नींद न आने का जो कारण है ना, जैसे कि मेरे वो दोस्त जिन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए, कहते हैं क्या हुआ तुम्हारे ऊपर, तो मैं पता नहीं कितने पाउंड्स जो है वार के दान कर सकता हूँ। अरे आपका एक पैगाम पे ये तो चलो किसी गलत आदमी को गए, गलत तरीके से गए, लेकिन अगर सीरियस होता तो फिर 500 पाउंड की बात ही क्या है। कुर्बान जाऊं तुम्हारी प्यार पर, दोस्ती पर, लेकिन मेरे दोस्त फिर भी ये दुखदायक है। और उनका हौसला बढ़ता है, उन चोरों का, उन ठगों का, उन पापियों का, हराम के खाने वालों का, वो उनका हौसला बढ़ता है, वो और लोगों को शिकार बनाएंगे। इसलिए भाई मेरी नींद उड़ी हुई है। अच्छी नींद लेने के लिए सबसे पहले मेरे दोस्त कहते हैं कि इसको झटक दो, भूल जाओ, भूल जाओ, बहुत कमाएंगे, ये सोचो कि देखो मैं कितना और कमा रहा हूँ, मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, ये सोच करके खुश हो जाओ। बहन भाइयों, कुछ नेगेटिव लाइफ में होता है, पर उस नेगेटिविटी को जितना जल्दी हो सके झटक दो तो ही नींद आएगी। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल के स्लीप क्लिनिक के लीड डॉक्टर ह्योग सेल्सिक कहते हैं कि ये नींद ना आने की जो परेशानी है ना, लोग ये एक मिलिट्री तरीका अपनाएंगे तो कामयाबी मिलेगी। अब ये मिलिट्री तरीका क्या है भाई? ट्रेनिंग दी जाती है मिलिट्री में लोगों को कैसे सो सकें वो। और सेल्सिक कहते हैं कि 8 घंटे की नींद का आइडिया एक मिथक है, लेकिन काफी नुकसानदायक भी। भाई औसतन 6 घंटे आप सो सकें तो मजे में आप रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्नचित भी रहेंगे। लेकिन आपको बता दूं बहन भाई, मैं तो 4 घंटे सोता हूं, 4 घंटे के बाद आंख खुली जाती है कुछ भी हो जाए, पर वो 4 घंटे ऐसी नींद सोता हूं कि यूं समझ लो कि सोने से पहले मैं अपने तमाम घोड़े बेच देता हूं, मैं घोड़े रखता नहीं अपने पास। तो इसलिए
सोना है तो नेगेटिविटी को झटकना है, उसको क्या कहते हैं कि वो धोबी पाट मार के पटकना है और पॉजिटिविटी को अपनाना है। ये सोच, ये विचार के जब जब जो जो होना है वो होके रहेगा। परवाह मत करो, जिंदगी चलती रहेगी। अपनी परेशानी को दूर करना है ना तो अच्छी बातें सोचो। सोने से पहले थोड़ा हाथ मुंह धोके स्वच्छ वातावरण में। हाँ, मोबाइल फोन को एक तरफ रख दो, कोई पुस्तक पढ़ना शुरू करो, जैसे ही थोड़ी नींद आए लाइट बुझा दो, फिर देखो मीठी नींद आएगी। आदत डाल लो, मोबाइल फोन से बचो रात को, नहीं टीवी से बचो रात को, सोने से पहले टेलीविजन मत देखो। बस अच्छा सोचते सोचते सो जाओ। वो तो होके रहेगा, जो होना है, फिर चिंता किस बात की।

एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि दिन में झपकी लेने से बचे, फिर रात को अच्छी नींद आती है। तब तक बिस्तर पर ना जाएं जब तक कि नींद ना आए, नहीं तो करवटें बदलते रहोगे। नींद को माँ भगवती के स्वरूप में देखते हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। अब आप कहेंगे साहब ठीक है नेगेटिविटी को झटक दे, नींद अच्छी आएगी, लेकिन बार बार जब ऐसे संदेश मिलते हैं, अभी निरंजन भाई फोन करके बता रहे हैं, मुझे भी आया था रवि जी आपका वो मैसेज, इस बार आपने सिर्फ 100 पाउंड्स मांगे थे उनसे तो भाई, और मैं भेजने भी लगा था कि कब कब रवि पैसे मांगेंगे मुझसे, कभी मांगे नहीं। अरे भाई यही सोच करके पैसे मत भेजना, स्कैम है, बहुत चला हुआ है।

पुलिस को रिपोर्ट करो, पुलिस कहती है कि जी वो साइबर क्राइम के लिए हमारी एक अलग टीम है, अलग सेक्शन है, और बैंक हॉलीडे चल रहा है इसलिए बैंक हॉलीडे पे आप कुछ नहीं कर सकते, वेट करो मंगलवार को रिपोर्ट करना। पुलिस तो आजकल छोड़िए साहब, क्या रखा सच्ची बातों में।

0: अच्छी नींद के लिए, स्ट्रेस से छुटकारा, चिंताओं से छुटकारा, मुक्ति, जो हो गया है उसे जल्दी कोशिश करो कि सुधार सकते हो तो ठीक है, नहीं तो उसको भुलाने की कोशिश करो। आज का चिंतन, आज का विचार भाई इलफोर्ड से पवन शर्मा का आलेख हमने प्रोग्राम में शामिल किया।
1: चिंतन, चिंतन।
0: अच्छी नींद के लिए, गहरी नींद के लिए दिन में झपकी ना लें, परेशानियों से छुटकारा, सोने से पहले टीवी और मोबाइल फोन का प्रयोग बिल्कुल ना करें और बेड में तभी जाएं जब नींद आ रही हो, ताकि जाते ही आप नींद की आगोश में खो जाएं। नींद आराम देने वाली, स्वस्थ देने वाली, स्वास्थ्य, हाँ हेल्थ, अच्छी हेल्थ चाहिए तो नींद जरूर लो। और नींद तो माँ भगवती की गोद है, जिसमें जाकर के आप अपने आप को कितना फ्रेश महसूस करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है। याद दिला दूं, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन में शामिल होता है।
1: चिंतन, चिंतन।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लीजिए साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का संदेश और रेट मैं बताने लगा हूँ, नोट कीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि भाई रेट अच्छे चल रहे हैं, अगर आप पैसे अपनों को भिजवाना चाहते हैं, भारत पैसे भिजवाना चाहते हैं तो सही समय है। एक पाउंड के बदले टुडे दे आर गिविंग 128.3 रुपीज, 128 रुपए 30 पैसे भारतीय मुद्रा में, भारतीय करेंसी में। एंड सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और SBI की किसी ब्रांच के थ्रू भेजते हैं, पर जून के एंड से पहले भिजवाइए, क्योंकि इस दौरान बी इन टू विन ए 75 पाउंड्स वाउचर डेली व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स। इसके अलावा गेट 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। TNC अप्लाइज। तो भाई ये चांस है, ये अवसर है, इसका फायदा उठाइए। रेट है 128.3 रुपीज फॉर 1 पाउंड।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
3: Lister, itna sasta deal dekha hai kabhi?
4: Nahi, to chalo Falcon Cash and Carry. Mustafa Basmati XXL Rice 40 LBS, sirf $24.99.
3: Hamza Samosas 3 for 10.
4: Top Star Fried Onions, only 99p.
3: Suhana Masalas 2 for 150. Ramdev Ram 2 for 149.
4: Hira Gram Flour 179. Heinz Ketchup 279.
3: Kesar Mango Pearl 149. Full Makana 245. Falcon Cash and Carry
4: 82 Assistant Street LE12JU ya Rowlett Hill LE54UN.
3: While stocks last.
5: Tumhe dil lagi.
2: The timeless soul of Qawwali returns to the stage.
6: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
2: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
6: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
2: Join us for a mesmerizing night of soulful music and the magic of a true Mehfil.
6: On Sunday the 7th of June at Hackney Empire.
2: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
9: No more worries for me.
10: Southall Travel, at all protected.
11: Asiana, in association with ZTV and Leica Radio, brings you the Asiana Lifestyle Show on Sunday the 31st of May at the new Bingley Hall in Birmingham,
12: where weddings, fashion, jewellery, beauty and lifestyle come to life under one roof.
11: Meet the UK's top brands, discover exclusive offers and get ready to be inspired and entertained in style.
12: Register now for free tickets at asianalifestyleshow.com.
11: For sponsorship and details, call 07803 633 926.
13: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स.
14: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट.
13: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स.
10: न्यू हिट्स ऑन लाइका रेडियो.

0: बैक टू बैक संगीत सुन रहे थे आप, दो गीत हमने परोसे। द सॉन्ग यू वर जस्ट लिसनिंग टू वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म खुदगर्ज, और इससे पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था वो गीत क्या कव्वाली थी, हमारे कव्वाली प्रेमी भी भाई जुड़े रहते हैं, तो वो गीत भैया वो कव्वाली अनोखी अदा फिल्म से थी, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब आ गया।
1: Like a radio. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.
0: ये भाई बांसुरी की धुन सुनकर के आप गीत को पहचान लेते हैं, शब्दावली को जान लेते हैं, याद आते हैं मनोज कुमार साहब हिमालय की गोद में। सोचा नहीं था ऐसी होगी वो, इतनी खूबसूरत चांद जैसा मुखड़ा।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Like a radio.
0: Like a extra podcast update.
4: और लाइक एक्स्ट्रा पर भाई हमारा नया एपिसोड अब आ चुका है पॉडकास्ट का, और ये दीप राजा द्वारा होस्टेड है। टाइटल है डोमेस्टिक वायलेंस, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो भाई इस डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिर्फ फिजिकल अब्यूज ही होता है, या जो कहा सुनी होती है, जो भाई बातों में टॉर्चर किया जाता है वो भी उसका हिस्सा है, और मेंटल एंड हेल्थ ट्रॉमा ऑफ सर्वाइवर्स एंड वेयर एक्सेसिबल सपोर्ट इज अवेलेबल, ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड इन दिस पॉडकास्ट। यू कैन वॉच इट ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: Like Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Like a radio.
5: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Oxford Playhouse 2nd to the 6th of June. For tickets and more info, click oxfordplayhouse.com. Radio partner Leica Radio.

0: थप्पड़ वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1 2 3 4 ला.

प्यार प्यार प्यार तो भाई दे दे उपहार उनको जिनका आज जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? जसुबेन लिख रही हैं, रवि भाई गुड मॉर्निंग, आई वांट टू विश बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू माय नीस दीपा, हर बर्थडे वाज यस्टरडे। कल मैंने इंतजार किया कि आप फोन करेंगी हैप्पी बर्थडे कहने के लिए, टेक्स्ट भेजेंगे, नहीं भेजा आपने। शी सेज आई डिडंट गेट चांस मैसेज भेजने के लिए, आज मेरे पास समय है। दीपा हैप्पी बर्थडे टू यू बिलेटेड फ्रॉम जस्सू मासी, नरेंद्र मासा अने रीना सुजी फाल्गुनी।

0: प्यार तो होना ही था भाई। जसुबेन आप कहती है कि मैंने रिकॉर्ड करना मैसेज, आजकल रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती, आर्काइव में हमारे कार्यक्रम रहते हैं, आप जब चाहें जो चाहें निकाल सकती हैं। आप हमारे उस पर ऐप पर जाइएगा और उसमें सारे कार्यक्रम हमारे मौजूद रहते हैं आर्काइव में, जो रिकॉर्डिंग आप चाहे निकाल सकती हैं, बहुत सारे लोग निकालते हैं। अब बस करो यार, हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, हो गया प्यार, प्यार प्यार प्यार हो गया, हो गया।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके। भाई फिर दोहरा रहे हैं, याद दिला रहे हैं, पैसे भिजवाना चाहते हैं अगर भारत तो भाई फायदा उठाइए। एक स्पेशल ऑफर जुड़ गई है उनकी इस रेट के साथ। रेट तो आज का मैं बता दूं कि टुडे फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 128.3 रुपीज, 128.30 रुपए भारतीय मुद्रा में। बट सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन 75 pounds वाउचर डेली व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds एंड 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000। TNC अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
3: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, a food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.

0: Keisha Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
2: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
1: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
2: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
0: Save the date, Friday 3rd to Sunday the 5th of July, and Indian summer is back.
3: Presented by Inspirate, exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
0: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
3: Or sales at leicamedia.co.uk.
4: Lester Mellor is back with exclusive radio partner, Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
5: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
6: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com फ्रॉम बर्फी, लड्डूज, गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया, फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट, पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
7: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA।
6: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
4: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live? Get the tune in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
8: Our Artist of the Week is सप्ताह है अनुराधा पोडवाल। बहन भाइयों, मुझे अनुराधा जी के साथ काम करने का अवसर मिला, वो अनुभव बड़ा सुखद रहा था। एक शो मैंने उनका कॉम्पीयर किया साउथहैम्पटन में, एक यहाँ साउथ बैंक में थेम्स के किनारे भाई, वहाँ पर भी उनका शो किया। और वैसे उनसे धार्मिक स्थलों पर भी मुलाकात होती रही, उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगा था। और साथ में उनकी बेटी कविता पोडवाल के साथ भी कार्य करने का अवसर मिला। पार्लियामेंट में एक दो फंक्शंस में उनसे मुलाकात हुई। तो भाई अनुराधा जी, आप जानते हैं कि धार्मिक गीतों के साथ जो है टी सीरीज में जब शामिल हुई तो गुलशन कुमार के साथ बहुत सारी उनकी सीरीज रिलीज हुए, और उस समय उन्हें इंटरव्यू करने का मौका मिला था, गुलशन जी भी साथ थे। उसके बाद गुलशन कुमार जी का कत्ल हो गया, और कितना अब यूँ कहिए कि नेगेटिव प्रभाव पड़ा था उस कंपनी पर। लेकिन उसके बावजूद भी भाई अनुराधा जी की आवाज़ देर तक फिल्मों में, धार्मिक स्थानों पर, मंच पर जो है रंग जमाती रही। और उनकी भाई आज ये इस समय जो ये प्रस्तुति है कि वो आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि आर्टिस्ट ऑफ द वीक टाइटल के तहत कुछ ऐसे गीत निकाल के लाए जाएं, सुनवाए जाएं, जो बहुत देर से ना सुने हों, लगे कि भाई कुछ कुछ नयापन है। भले ही गीत पुराने हों लेकिन देर बाद सुने जा रहे हों।

0: Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: और लीजिए साहब, ये गीत हम उनके नाम कर देते हैं जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि आज जन्मदिन मनाने वालों में एक नाम शामिल है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, परितेश देशमुख के पूज्य पिताश्री। दुनिया में नहीं है लेकिन याद किए जा रहे हैं। आज ही जन्मदिन मनाने वालों में एक नाम है सुशील कुमार का। भाई पहलवान है, रेसलर है, दिल्ली में जन्मे थे, नजफगढ़ उसे हरियाणा में ही मान लीजिए आप। और ये पहलवान जो है बहुत सारे विवादों से घिरे रहे हैं, जुड़े रहे हैं, इसलिए भी मशहूर हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स तो सुशील कुमार पहलवान। सुनते हैं वो गीत जिस पर भाई मैंने बहुत एक्टिंग की, क्योंकि डांस तो करती थी एक लड़की फरीदाबाद की, और साहब उसके साथ खूब प्रैक्टिस करके हम दोनों, ये जो इसमें मेल स्वर थोड़ा सा आता, देवानंद की जो भूमिका थी वो मैं निभाता था, बाकी सारा डांस वो लड़की करती थी विमल नाम की। और साहब खूब क्विंटल क्विंटल के वो ठुमके लगाती थी, खूब हॉल में सीटियां बजती थी, और पीछे जो आर्टिस्ट होते थे ना हमारे साथी, वो भी भाई पीछे वो पर्दे में से झांक झांक के उसका डांस देखते थे, और थोड़ा बहुत मेरा भी, लेकिन अपना तो समझो कि खाली मौजूदगी थी स्टेज पर। क्या डांस करती थी वो लड़की, नाम क्या, कमलेश याद आ गया, विमलेश नहीं, कमलेश भाई, कमलेश नाम था उसका। और मैं बात कर रहा हूँ करीब 40-45 बरस पहले की। सुपरहिट डांस ऑन दिस सॉन्ग, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, पर ठुमकों में फूट पड़ी वो बात।
3: ऐसी बात

0: वैजयंती माला पर वही पिक्चराइज हुआ था ये गीत, साथ में देवानंद थे और गीत में शब्दावली तो यहां तक थी लेकिन उसके बाद संगीत जबरदस्त और उस पर देर तक वो चला डांस। फिल्म का नाम था ज्वेल थी।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Ye hai Leica Radio.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
0: विजय को याद आ रहा है ये गीत, भाई कितना बढ़िया डांस किया था। वैजयंती माला तो थी ही भाई नृत्यांगना, प्रोफेशनल डांसर। और हंसा बोरा जी, अर्जुन जी, प्रदीप सोलंकी, अहीर यादव, थैंक यू वेरी मच आप सबका। एजाज चशम में हमें सुन रहे हैं, हर गीत पर उनकी प्रतिक्रिया सर आंखों पर। प्रकाश सूत्र, अनिल सोनी वियाना में, निर्मला जी थैंक यू, रंजन।

0: holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: साउथहॉल ट्रेवल का एक संदेश है भाई, आपको याद दिला दें हम। वो कह रहे हैं कि भाई हॉलीडेज पे जाने का मौसम भी है, मौका भी है और सारी व्यवस्था भी है। मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथहॉल ट्रेवल। एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद द हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन। ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 years एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड, साउथहॉल ट्रेवल। विजिट कीजिए साउथहॉल ट्रेवल और कॉल 02085748410।

0: मिल के बिछड़ना और बिछड़ के फिर मिलना, क्यों ना हम एक हो जाएं। ब्यूटीफुल लिरिक्स एंड बहुत प्यारा गीत। मैंने चुना था इस गीत को फ्रॉम द फिल्म रॉकी। रॉकी 1981 की रोमांटिक एक्शन फिल्म थी, डायरेक्टेड बाय सुनील दत्त जी। एंड सुनील दत्त जी ने टीना मुनीम, रीना रॉय, अमजद खान, राखी, रंजीत और बहुत सारे एक्टर्स को लिया था किसके अगेंस्ट। वेल, रॉकी थे कौन, याद आया, संजय दत्त की ये डेब्यू फिल्म थी। बहुत प्यारी फिल्म और इस फिल्म के गाने भी काफ़ी मशहूर हुए थे। संगीत था आर डी बर्मन साहब का, आनंद बख्शी साहब ने लिखा था इस गीत को। देखें जरा, बिकेम पॉपुलर, वेरी पॉपुलर हिट सॉन्ग बन गया था और वैसे ये गाना भी काफ़ी पसंद किया गया था। एंड इस गीत में दो आवाज़ें आपने सुनी, किशोरदा एंड लता जी की। और इससे पहले आज के प्रोग्राम का आगाज मैंने किया माधुरी दीक्षित और आमिर खान पर पिक्चराइज हुए गीत के साथ, जिसमें जितेंद्र भी थे और फिल्म का नाम था दीवाना मुझसा नहीं। आनंद मिलन का था संगीत और इस गीत को लिखा था समीर ने। ऐसे ही मीठे मीठे गाने ऑल द वे टिल 4 o'clock। यस, आई एम सिटिंग इन फॉर बाली ब्रह्मभट्ट जी, जो कि छुट्टियां मना रहे और स्टेज पर कल तो कमाल धमाल कर दिया था। एंड बहुत मजा आया। अगर आप भी वहीं रॉयल अल्बर्ट हॉल में थे तो आपने भी जरूर इंजॉय किया होगा पूरा का पूरा प्रोग्राम। और हमें भी सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत से ऐसे साथी मिले जो अपने कान हमें उधार देते हैं, अपने होने का कभी कभी एहसास भी नहीं दिलाते हैं, लेकिन उन सब से बात करके बहुत खुशी हुई। अब नाम तो सरिता याद रख नहीं सकती है ना, एक भला सा नाम याद आ रहा है मुझे, मुकेश तन्ना जी। यस, मुकेश तन्ना जी कहते हैं मैं गार्डन में कल बैठा, मींस कल ही का प्रोग्राम था, तो कहते हैं कि आज मैं सुन रहा था प्रोग्राम एंड मेरी वाइफ कह रही थी गार्डन में इतनी तेज़ रेडियो चला रखा है, इसको आहिस्ता कर दे, लोग क्या कहेंगे। तो कहते हैं, मैंने उन्हें कहा कि लोग क्या कहेंगे, वो भी सुनेंगे लाइका गोल्ड पर कितने प्यारे प्यारे गीत आ रहे हैं। थैंक यू मुकेश तन्ना जी एंड मिसेस तन्ना, आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। स्वीटी जी, प्रीति जी, आपसे भी मुलाकात हुई। एंड टीलू दीदी, आपने भी बड़े प्यार से दूर से वेव किया था एंड फिर आके मुझसे बात भी की, बहुत अच्छा लगा। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अब किस किस को याद करूँ, किस किस को याद रखूँ। नीफ, आप भी मिले थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ा लें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भी अगर आप इनके जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो योर £1 इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू टुडे 128 rupees and 25 paisas, मे बी 30 paisas एज वेल। डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करा रहे हैं। और सुनिए, अगर आप पहली जून से पहले पहले आप चाहे SBI योनो ऐप के जरिए और ब्रांच में जाकर पैसे ट्रांसफर कराएंगे तो यू विल बी इन टू विन अ £75 वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर £1,000 एंड आल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर £2,000। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you. लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 lbs सिर्फ $24.99,
2: हमजा समोसास 3 for $10,
3: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
2: सुहाना मसालास 2 for $150, रामदेव नमकीन 2 for $149,
3: हीरा ग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
2: केसर मैंगो पल 149, फूल मखाना 245, फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE1 2JU या रोलेट्स हिल LE5 4. UN.
2: While stocks last.
1: The timeless soul of Qawwali returns to the stage.
2: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
1: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
2: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
1: Join us for a mesmerizing night of soulful music and the magic of a true Mehfil.
2: On Sunday the 7th of June at Hackney Empire.
1: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA. Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
5: in Dubai.
1: Asiana, in association with ZTV and Leica Radio, brings you the Asiana Lifestyle Show on Sunday the 31st of May at the new Bingley Hall in Birmingham.
2: Where weddings, fashion, jewellery, beauty and lifestyle come to life under one roof.
1: Meet the UK's top brands, discover exclusive offers and get ready to be inspired and entertained in style.
2: Register now for free tickets at asianalifestyleshow.com.
1: For sponsorship and details, call 07803-633-926.
7: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
8: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
7: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: आतिफ असलम लाइव इन द यूके।
9: To the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner, Leica Radio.
10: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
11: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
12: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: 1973 में आई थी ये फिल्म और इस फिल्म के सारे गाने बड़े मशहूर हुए थे, खास तौर पर एक डायलॉग राजेश खन्ना की आवाज में, और मेरे दिल में आज क्या है बिना का गीतमाला पर इस गाने ने तो धूम मचाई थी। और फिर दूसरा कौन सा था, अब चाहे मार उठे या बापा, वो भी गाना बड़ा मशहूर हुआ था। साहिर लुधियानवी जी ने लिखे थे सारे गाने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था संगीत, और इसमें मेरी फेवरेट हीरोइन थी दोनों राखी एंड शर्मिला टैगोर, एंड राजेश खन्ना का तो उस वक्त बहुत क्रेज था। एंड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था यश चोपड़ा जी को फॉर दिस फिल्म, एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस राखी को। बाकी के नाम नॉमिनेट हुए थे, बेस्ट फिल्म बेस्ट एक्टर राजेश खन्ना, बेस्ट एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर, एंड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एंड बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर किशोरदा को फॉर मेरे दिल में आज क्या है, पर अवार्ड नहीं मिला था। पर गाने कितने मशहूर हुए थे ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे वो साथी जो बराबर मुझे मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच फॉर जॉइनिंग लाइका रेडियो नेटवर्क के, लाइका गोल्ड पर सुन रहे हैं, लेस्टर में सुन रहे हैं, मिडलैंड्स में सुन रहे हैं, जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं, आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करती हूँ मैं। एंड मैं हूँ सरिता सबरवाल, सिटिंग इन फॉर बाली परंपरा।
0: दिस इज लाइका रेडियो। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: धरती कहे पुकार के, ये था फिल्म का नाम जिसका ड्यूएट आपने सुना मुकेश जी और लता जी की आवाज में। 1969 की फिल्म थी। पुराने गाने सुनकर मजा ही कुछ और तरह का होता है। यस, आपको पसंद आ रहे हैं ये गाने जानकर बहुत अच्छा लग रहा है। फारूक मोहम्मद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज के लिए। महेंद्र बरजारिया जी साउथ हैरो में सुन रहे हैं। संध्या भापसर, विजय गुजरुई, मुकेश तना जी, आपका मैसेज भी आ गया और एक गाने की फरमाइश भी मुझ तक पहुंचा दी है। थैंक यू राजेश जी, आप भी सुन रहे। अर्जुन, दिनेश पोपट जी, नाजिया, शकील, नीलम जी, मृदु जी, सहर तोची जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पमी सिंह जी इंसलाव एंड उल्लाश इन टोरंटो, हंसा वोरा जी, आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और आप कहाँ बैठे सुन रहे हैं, अगर अपने होने का एहसास दिलाना चाहते हैं तो देर किस बात की, जल्दी से व्हाट्सएप कर दीजिएगा।
2: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Wake up to Kajal on Breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Badden weekdays at 4 p.m. Leica Radio.

0: बहुत दिनों के बाद इस गीत को हमारे प्रोग्राम में जगह मिली, जमीन आसमां, ये था फिल्म का नाम, 1972 की फिल्म। आज हमारी प्यारी सी मिसेस शेख अपना बर्थडे मना रही है। मिसेस शेख को हमारी तरफ से, हमारी सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मिसेस शेख की एक खासियत है कि वो किसी भी प्रेजेंटर का कभी भी बर्थडे नहीं भूलती हैं, हमेशा अपनी बेस्ट विशेज एंड गिफ्ट हमेशा भेजती रहती हैं। हमारी तरफ से तोहफा, आज का सारा प्रोग्राम आप ही के नाम। मिसेस शेख, हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: राइट, अ पाउंड इन योर पॉकेट कैन गेट यू इंडियन रुपीज 128.94, पाकिस्तानी रुपीज 374.86, श्रीलंकन रुपीज 441.76, बांग्लादेशी टका 165.34, अफगानी 84.69, US डॉलर 1.34।
1: Like a radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LIKA Radio mobile app now. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: राइट, गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में 107 pounds and 86 pence पर ग्राम।
1: राम ज्वेलर्स स्पेशलाइजिंग इन डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, 22 कैरेट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स एंड गोल्ड बुलियन बार्स। विजिट राम ज्वेलर्स ऑन 116 बेलग्रेव रोड, लेस्टर, और कॉल 0116 266 4278।
2: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: बहन, गीतों की कोई एविडेंस ऐसे नहीं है, रिटन एविडेंस की इसमें वायलिन जो है वो उत्तम सिंह जी नहीं बजाया, लेकिन उन्होंने इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है तो ऑब्वियसली कुछ एक गीतों में ये बताया गया है कि ये इन गीतों में जो वायलिन है वो उत्तम सिंह जी ने ही बजाई है। वैसे उन्होंने बहुत से म्यूजिक कंपोजर के साथ किसी को असिस्ट किया है, म्यूजिक असिस्टेंट इन गुड्डू, करण, प्रेम शक्ति, जज्बात, अंदाज अपना अपना में म्यूजिक असिस्टेंट रहे, हम आपके हैं कौन में म्यूजिक अरेंजर थे, प्यार का तराना म्यूजिक असिस्टेंट रहे, अरेंजर थे इन अनमोल के गीतों में, म्यूजिक अरेंजर एंड कंपोजर पंजाबी मूवी थी, मेहंदी शगना दी, ऐसे बहुत सारी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है, चाहे वो आर डी बर्मन साहब हो, एस डी बर्मन हो या नौशाद साहब थे, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया। चलिए भी अब जल्दी से आपको जरा ये इन्फॉर्मेशन दे दें, कॉलिंग ऑल किशोर कुमार फैंस, स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन, इंद्रानी, संजय एंड 515 बैंड, इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19th जून एट द प्रिंस रेजेंट होटल चिगवेल में। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका गोल्ड रेडियो।
0: ये है लाइका रेडियो, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: ऐसे बहुत से गीत हैं जो कंपोज किए उत्तम जी ने. उत्तम जी का साथ दिया था इस फिल्म में जगदीश जी ने.
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
0: Right, I was telling you about Uttam Jagdish कि उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में एक साथ म्यूजिक दिया था, including मनोज कुमार's Painter Babu and also Clark, and they also worked on this film. वारिस, जिसका मैंने गीत आप तक पहुंचाया. और अब जरा जल्दी से बता दूं कि हरे राम, यस, ये लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द मिथोलॉजिकल शो हमारे हरे राम नहीं हमारे राम, एंड स्टारिंग एक्लेम्ड एक्टर आशुतोष राणा एज रावण एंड राहुल आर बुचर एज Ram, and it take place on between 9th and 12th of July at London's Aventim Apollo.
1: This is Leica Radio across the Midlands.
0: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे. और हम आपको साउथ हॉल ट्रैवल वालों का भी एक मैसेज पहुंचा दें. मेक द समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रैवल्स. एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड्स फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन. ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 years एंड विनर्स ऑफ ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड. विजिट साउथ हॉल ट्रैवल और कॉल दैम ऑन 0208-574-8410.
1: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Extra podcast update.
0: जी हाँ, उसके बारे में भी बता दूं जल्दी से. डोमेस्टिक वायलेंस है इस बारी का जो टाइटल है, एंड होस्ट करे हैं दीप राजा. और बहुत सारी इसमें बातचीत होगी, लेकिन मेन पॉइंट है आपसे जानना चाहते हैं कि इस डोमेस्टिक वायलेंस ओनली फिजिकल अब्यूज, या फिर किसी को हम तानेबाजी भी करते हैं तो वो भी अब्यूज़ होता है. लाइका एक्स्ट्रा

0: बैक टू बैक दो गाने सुने आपने, उम्मीद है जरूर पसंद भी किए होंगे। दिल आशना है 1992 की फिल्म थी जिसे हेमा मालिनी जी ने बनाया था, यस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे याद आ रहा है। एंड इसमें दिव्या भारती एंड शाहरुख खान थे, यस या मेरे ख्याल में। एनीवे अगर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बता सकते हैं। और दूसरा गीत मैंने फिल्म चांदनी से चुना था एंड ये गाना भी बहुत खूबसूरत था। ये गाना चुनने की एक वजह थी कि पहले गीत में साधना सरगम और सुरेश वाडकर थे और दूसरे गीत में सुरेश वाडकर की भी आवाज़ शामिल थी, लेकिन साथ ही बदल गए, अनुपमा देश पांडे आ गई। पर सारे प्रोग्राम में मैं साथ ही नहीं बदलने दूंगी, वैसे ही मैंने कहा कि दोनों जो हैं वो दोनों गीतों में क्यों ना सुरेश वाडकर जी की आवाज़ शामिल करें। वैसे आर्टिस्ट ऑफ द वीक इस हफ्ते हमारी हैं अनुराधा पौडवाल जी, उनकी आवाज़ में गाया हुआ बहुत प्यारा सा गीत मैंने क्यू ऑलरेडी कर लिया है। ये है प्रोग्राम का लास्ट आवर, तो अगर अभी अभी आपने ज्वाइन किया है तो बड़ी गलत बात है भी। मैं तो यहाँ पर पहुँच गई थी 1 बजे आपके मनोरंजन के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी 1 बजे से मेरा साथ दीजिएगा। कल भी एंड पूरा इस हफ्ता मैं आपके साथ रहूँगी एंड देन वीकेंड पे भी मेरा प्रोग्राम होगा। सो वो भी सुनिएगा, वो होगा 4 till 7 इन द ऑन वीकेंड्स। पर वीकडेज में बाली जी के लिए आई एम कवरिंग हिम, तो मुझे उम्मीद है कि मेरा साथ भी आपको पसंद आ रहा है। ढेर सारे मैसेजेस हैं, मैंने आप सभी को व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज वापस भेजे हैं, थैंक यू एवर सो मच। इसी तरह से बड़े प्यार से मेरा साथ देते रहिएगा। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत कुछ कहने को होता है, इसलिए कभी कभी हम नाम नहीं ले पाते हैं, पर ये मत समझिएगा कि हम अवॉइड करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता, कोई भी प्रेजेंटर ऐसे नहीं करता है। सो अब ज़रा ये काम हो जाए जल्दी से, फिर अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट, अगर आप इनके जरिए पैसे आज ट्रांसफर करना चाहते हैं तो योर 1 pound इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू अप टू 128 rupees and 45 paisas। एंड सेंड मनी टू इंडिया वाई SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds। ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड क्वाइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June. June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective alternative disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald Disposables, available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
7: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
8: No more worries for me or you.
9: Southall Travel, Atoll Protected.
10: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
11: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
13: Lester Mellor is back with exclusive radio partner Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester. Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
14: LemFi means quicker and safe way to send money.
15: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
14: LemFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code Leica.
15: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LEMFI mobile app today.
16: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
17: जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल? मिलिए अनुपमा से.
18: अनुपमा Monday to Sunday at 8:30 PM only on Utsav Plus. Utsav Plus, Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
19: Presented by Southall Travel, powered by Data T Premium and Wellman and Wellwoman by Vita Biotics.
20: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758 580 1801 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
21: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
13: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 AM and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation. Feel good track.
0: brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: जी हाँ, अनुराधा जी के साथ मेल वॉइस, पता नहीं आपने उन्हें पहचाना या नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ, इस गीत में मेल वॉइस थी इंद्रजीत की। फिल्म बेटा से चुना था मैंने इस गीत को, 1992 में आई थी ये फिल्म, और ये गाना फिल्म में नहीं था। अगर आपने देखी है फिल्म तो याद कीजिए कि देखा था आपने या नहीं देखा था। एनीवे, अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टूडियो में कोई और भी आई है, उनसे भी बात करा दूं जल्दी से। क्या कर रही हैं अभी आप यहाँ पर?
3: सर, ते आई कम टू सी यू
2: एक्चुअली। रियली? अच्छा, नाइस।
3: एंड यू आर इन, सो आई थॉट इससे ज्यादा अच्छा मौका क्या होगा।
2: क्या बात है, क्या
3: सखी से मिल गया।
2: सखी है, बिल्कुल सखी है। मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक है अनीसा जी? इतनी लंबी छुट्टियां कैसे ले लेती हैं?
3: हाय, चुप करो, अभी तो शुरू हुई है।
2: नहीं नहीं, अभी शुरू नहीं है, अब वापिस आने का टाइम है।
3: सरिता, वो आवाज नहीं आ रही आपकी।
2: काश लंबी जोड़ी बात कर पाती अनीसा, पर यस, माइक नीचे। जरूर बातें हम करते रहेंगे, हमारी बातचीत चलती रहेगी, लेकिन अब जरा जल्दी से आपकी सुन।
0: दिस इज लाइक अ रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: रामानंद सागर साहब ने बनाई थी ये फिल्म, एंड इस फिल्म में थे धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी, और ये गीत मैंने इसलिए शामिल किया है, ये फिल्म रिलीज हुई थी ऑन 24th ऑफ मे और उस दिन मैं ये गाना प्ले नहीं कर पाई, और आई वॉन्टेड टू टेल यू कि कितने साल पुरानी ये फिल्म है, आज भी इसके गीत कितने पसंद किए जाते हैं।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: Good afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara Najikna Asian Shops ma.

0: सारा शहर एक तरफ और प्यार जो होता है अपना एक तरफ। राजकुमार कोहली साहब ने बनाई थी ये फिल्म, उन्होंने डायरेक्ट की थी, रिटन बाय इंद्रराज आनंद और म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को भी शामिल करने की एक वजह है कि ये फिल्म 25 मई को यानी 25 मई को रिलीज हुई थी 1979। आई वांटेड टू प्ले इट इन माय शो यस्टरडे लेकिन मैं नहीं कर पाई थी। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, एक पाउंड के बदले आज आपको क्या मिल सकता है? पाकिस्तानी रुपीस 373.73, इंडियन रुपीस 128.78, श्रीलंकन रुपीस 443.14, बांग्लादेशी टक्का 165.23, अफगानी 84.67 एंड मॉरिशियन रुपीस 63.70। का मतलब कमला जी सुन रही है ना, आपने कहा मॉरिशस के पैसे क्यों नहीं बताते हैं, बता दिए।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold ka rate hai 108 pounds and 7 pence per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. India Cricket Score Updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England Cricket.
0: इस वक्त मैच चल रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच। गुजरात टाइटंस चॉस टू फील्ड फर्स्ट एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बना लिए 93 runs in 8.2 overs एंड उनके दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द एफसीए। Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Traffic and travel.
2: I'm Samantha Dean. The M69 southbound's queuing due to an earlier police incident between the M1 at Junction 21 at Leicester and Junction 1, the A5 at Hinckley. Longbridge, Frogmill Road's partially blocked. Slow traffic due to a broken down vehicle at Crychen Close. The M42, there's a speed restriction of 50 miles per hour due to long-term roadworks. That's in both directions between Junction 9, Coles Hill and the M42 at Junction 6 at Birmingham Airport. Acocks Green, the A4 41 Gospel Lane one-way streets closed due to water mains work. That's between the A41 Alton Boulevard and Warwick Road. That's the latest.

0: भाई 3 घंटे तक मेरा साथ दिया, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह से कल भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। और अब मेरे जाने का वक्त है, सैंडी शाह विल बी हेयर ऑन द हॉट सीट एंड आपको ड्राइव करके ले जाएंगे घर तक, जहाँ भी जा रहे हैं आप, कहीं भी हैं, सफ़र में हैं, तो आपका साथ देंगे। और दूसरी तरफ होंगे लाइका रेडियो पर हमारे राजबदन, तो उनका साथ दीजिएगा। माइक्रोफोन के इस तरफ से सरिता अब आपसे इजाज़त चाहती है। जिन मेरे साथियों ने बड़े प्यार से मुझे मैसेजेस भेजे, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने बड़े प्यार से मुझे मैसेजेस लिखे हैं। मैं अगर आपका जवाब नहीं दे पाई हूँ तो माफ़ी, कल कोशिश रहेगी कि सभी के नाम मैं प्रोग्राम में शामिल करूं। आज के दिन ही अपना देश फिल्म भी रिलीज हुई थी, लेकिन उसके गाना बहुत लंबा था इसलिए आज नहीं शामिल किया, तो कल आने वाले कल में वो गाना भी कोशिश करूंगी कि मैं आप तक पहुंचा दूं। चलिए भी अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। माइक्रोफोन के इस तरफ से इजाज़त, कल फिर मिलते हैं 1 बजे की खबरों के बाद। मेरे बाद सैंडी शाह आएंगे और फिर आएगी अश्विनी और सुबह काजल लेके आती है आपके लिए ब्रेकफास्ट शो। बाय फॉर नाउ।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: ये है
1: Leica Radio. The Leica Radio Network is now also streaming live on the Nation Player app. Download on iOS and Android mobile devices.
2: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons, proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you. लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी। मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 34.99।
2: हमजा समोसास 3 for 10।
3: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p।
2: सुहाना मसालास 2 for 150। रामदेव नमकीन 2 for 149।
3: हीरा ग्राम फ्लावर 179। हाइंस केचप 279।
2: केसर मैंगो पल 149। फुल मखाना 245। फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN।
2: While stocks last.
4: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner Leica Radio.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
8: Asiana, in association with ZTV and Leica Radio, brings you the Asiana Lifestyle Show on Sunday the 31st of May at the new Bingley Hall in Birmingham,
9: where weddings, fashion, jewellery, beauty and lifestyle come to life under one roof.
8: Meet the UK's top brands, discover exclusive offers and get ready to be inspired and entertained in style.
9: Register now for free tickets at asianalifestyleshow.com.
8: For sponsorship and details, call 07803 633 926.
10: Ab London baithe milega का एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स.
11: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट.
10: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स.
12: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
13: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
14: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
15: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
12: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food. Wherever you go, that's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
16: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.

0: listen to the freshest hits added daily on Leica Radio. Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Vadon, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Leica Group, home of Leica Radio and Leica Gold.
1: Leica Radio.
2: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
3: जगदात्री,
2: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है।
3: माला ले आना, लाइया जी।
2: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है।
4: टीम, get ready for the action।
2: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री। देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर, अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
0: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अभी ना यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803EE392 एंड अप टीवी, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
5: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-6333 now. That's 020-3773-6333. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
7: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
8: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. 90s throwback plays now.
9: Leica Radio.

0: Basmati Rice.
1: Nisha Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash and Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street. CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
5: Be part of a historic grand opening.
6: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
5: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
6: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
5: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
8: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ. कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा.
9: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए.
10: हो अपनी माँ को बोलो, मैं लेकर आऊंगा.
11: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम.
9: अरे कहाँ हो तुम?
10: हो आलो आलो.
11: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम.
1: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
7: Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
12: CTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
13: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
14: खुद से भी ज्यादा.
12: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
14: बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
12: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394.
15: इट वॉज जस्ट अनदर डे, अ फेमिलियर ड्राइव थ्रू फेमिलियर कंट्री, बट देन जस्ट अराउंड द कॉर्नर केम द अनएक्सपेक्टेड. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
7: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
16: Say what?

0: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: 0208574 8410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
5: विजिट mantrahollidays.co.uk or call 0203773633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
7: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
6: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
7: Or sales at leicamedia.co.uk.
8: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: You through the night with the Midlands biggest Asian hits on Leica Radio.

0: ये है लाइका रेडियो,
1: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
2: Atif Aslam live in the UK.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS.
1: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
6: T's and C's apply.
5: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All ATOL protected. Call 0207 132 0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
7: Abhira, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है. क्या तुम मेरे साथ?
8: जहाँ तुम बनता
7: है. ये फैसला मेरा था. भुगत तुम रही हो. मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. कुछ नहीं कर पा रहा हूँ.
8: अगर हम साथ हैं
7: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे.
9: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर.
10: ये रिश्ता क्या कहलाता है. मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस. अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड अप टीवी. प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नैटको फूड्स.
0: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.